سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. एक ऐलान है आखिर में, एक खुशखबरी भी है कि मस्जिद की इंतजामिया में, इसी मस्जिद की इंतजामिया ने औरतों और बच्चियों के लिए कुरान मजीद की तहफीज के इकदार कायम की है, जो अरबी नहीं बोलने वाले लोग अजम जो हैं उनके लिए। तो भाई और बहनों से गुजारिश है कि वो अपने बच्चे और खुद औरतें, औरतों के लिए भी इंतजाम है, कुरान मजीद की तहफीज हिफ्ज भी करवाएंगे और मेरा ख्याल से अरबी भी कुछ सिखाते हैं। तो आप इमाम साहब से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि दाखिले पर क्या तारीख है, कब दाखिला होना है। और कुरान मजीद का इल्म अगर हमारे बच्चे बचपन से सीखना शुरू कर दें और उन लोगों से जिनका अकीदा दुरुस्त है, जिनका मनहज बिल्कुल दुरुस्त है, तो मेरे भाई दुनिया आखिरत की कामयाबी से है। सुभानकुम व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، आसान फ़िक्र कुरान और सुन्नत की रोशनी में दर्स जारी है। किताब सुन्नत पर बात कर रहे थे और आज की नशिस्त में एक नए बाब से दर्स का आगाज करते हैं। कवा सयाम, रोज़े की कवा, रोज़ा कैसे कज़ा किया जाता है। और कज़ा का मायने ये है कि अगर कोई शख्स रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा उज़्र शरई की वजह से ना रख सके तो फिर वो क्या करें। और उज़्र शरई जैसा कि आप जानते हैं, सफ़र और मर्ज, या इसके अलावा औरतों में हैज और नफसा, हैज और निफास, ये शरई अहदार हैं जिनकी वजह से फ़र्ज रोज़ा छोड़ा जा सकता है। और अगर कोई शख्स उज़्र शरई की वजह से रोज़ा न रखे तो फिर उसके ऊपर कवा वाजिब हो जाती है।